0: 333
1: प्रोपाइटर नवीन श्रेष्ठ श्रेष्ठ मेसिनरी स्टोर एंड सप्लायर्स बिगु गांव पालिका 4 सिंगटी दोलखा।

0: मैं तुम्हें भी कुछ नहीं बता सकता, सिर्फ इतना कह सकता हूँ I love you.
1: बिल्कुल झूठ.

समाचार विचार विश्लेषण मनोरंजन साहित्य कला संस्कृति पर्यटन विकास कला जनपक्षीय आवाज हमरो रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज़।